0: This is Jhabua in western Madhya Pradesh. On paper, every household here was supposed to receive tap water under the Jal Jeevan Mission. But on the ground, women are still digging pits in dry riverbeds for a few liters of muddy water. Villagers say the pipelines were laid here in 2022. But 4 years later, not a single drop has flowed.
1: पानी आप लोग रोज ऐसे ही भरते हैं?
2: हाँ, डेली आना पड़ता है पानी भरने के लिए.
1: अच्छा.
2: सुबह सुबह शाम भी आना पड़ता है पानी. ज्यादा मेहमान आता हो तो शाम को भी आना पड़ता है. रात को 9-10 भी बज जाता है यहाँ पे.
1: अच्छा.
2: आदमी को साथ के लाना पड़ता है यहाँ पे. यह नदी है, उसमें कुछ जानवर भी रह सकते हैं. उधर से भी जंगल आ रहा है.
1: के गांव में तो जल जीवन मिशन की पाइपलाइन आई हुई है, फिर क्यों, क्या हो गया?
2: पाइपलाइन तो आई है लेकिन पानी नहीं आया.
0: But Kheda is not alone. In the Bakatpura ward of Para Panchayat, residents say the scheme was officially completed and handed over in 2024. Yet, families are still paying for tanker water. The taps installed under the mission remain bone dry. In fact, these taps have become symbols of a failed promise.
1: आखिरी बार इन नलों में से पानी कब आया था?
3: आखिरी बार सर 2023 में ही आया था सर. उसके बाद तो हमने नहीं देखा सर. हाँ,
1: तो अब ये क्या इस्तेमाल में आ रहे नल?
3: अभी सर ये कोई जगह तो टूट गया और कोई जगह ये बकरी बांध रखी है, इसी ये इस्तेमाल कर रहे हैं सर इनका हम.
0: The story repeats itself in Dhandalpura.
1: पानी की जो टंकी है जो बनी हुई है धांधलपुरा गांव में, 50,000 लीटर पानी की क्षमता जिस टंकी की होनी चाहिए उसमें अगर आप देखें तो फिलहाल महज कुछ फिट पानी इसमें फिलहाल बना हुआ है. और गांव वालों का आरोप है कि ये पानी भी बहुत पुराना है. ये जो आप पानी देख रहे हैं ये होगा महज आधा फिट पानी, और अगर पूरे पानी को मिला भी लिया जाए तो ये 1,000 लीटर पानी भी नहीं है इस वक्त इस पानी की टंकी में.
0: The system meant to purify drinking water remains unused because it was never given an electricity connection.
1: टंकी से पानी आता है? नहीं,
4: अभी फिलहाल तो नहीं आता है सर.
1: कब से?
4: पिछले 2 साल से तो नहीं आ रहा है सर.
1: अच्छा. जी, कितना पानी है अभी?
4: समथिंग कुछ ही पानी है सर, और वो भी इतना गंदा है सर.
1: कितना है, क्या लग रहा है आपको, ये पानी कब से है?
4: ये सर 2 साल पुराना, जो जब स्टार्ट हुई थी एक दो दिन आया था पानी, उस समय का पानी है. इसके बाद तो फिर पानी आया नहीं. जी.
1: और आप देखिए इस पानी को साफ करने के लिए जो मशीन यहाँ लगाई गई है, ये जो इस पे लिखा हुआ है वाटर डिसइंफेक्शन सिस्टम, वो वाटर डिसइंफेक्शन सिस्टम जो है वो यहाँ लगा तो दिया गया लेकिन वो चालू कहाँ से हो? आप ये कनेक्शन इसका कहाँ से जाएगा ये भी हम आपको दिखा देते हैं.
0: Under the Jal Jeevan Mission, nearly 430 crore rupees has been spent in Jhabua district. Official records show that work has been completed in 519 out of 713 villages and handed over to local panchayats. In Kheda village, works worth 75 lakh rupees have been executed. In Para panchayat, projects worth 50 lakh rupees have been completed. And in Dhandalpura, over 1.09 crore rupees has been spent on water tanks and pipeline infrastructure. So where did the system fail? The Public Health Engineering Department says projects are completed and handed over to panchayat. The minister cites summer conditions and falling groundwater levels.
5: जो हमारे रनिंग में काम है तो कुछ जगह दिक्कत आ रही है पानी को लेकर के, वाटर लेवल डाउन होने के कारण से.
0: The files say the work is complete, the expenditure is accounted for. The big question, if not on ground, where did the crores go? And why is no one monitoring it? Residents of Jhabua are desperate for a reply. With Ravish Pal Singh, Bureau Report, India Today.
6: Get Real India, the stories that really matter from the ground. The Jal Jeevan Mission, hopefully someone's watching. Thanks for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubh Ratri, Jai Hind, Namaskar.
7: listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
8: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
7: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
9: You're listening to MSNBC.
7: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.

0: इस दुखद घटना पर पूरा प्रशासन चिंतित है, व्यथित है और हम सब इसको मिलकर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके संदर्भ में जो एनफोर्समेंट के एक्शन है, जिन बिल्डिंग्स के पास जरूरी कागजात, जरूरी अनुमतियां नहीं है, और जैसे ये बिल्डिंग भी इसकी अनुमति 2024 में दी गई, जो आज ये दुखद घटना हुई है, 2024 में 6 कमरों की B&B चलाने की अनुमति दी गई। तो ऐसे ही अब हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त NOCs नहीं है उसको सील किया जाएगा, उनकी अनुमति जो वायोलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा।
1: जब स्वीकृत 5 कमरे की जगह 25 कमरे का GST उसूल रहे थे,

0: तो देखा तो हमने तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से आवाज़ आ रही थी, मैट्रेसेस निकालो, कम से कम 20 से 22 मैट्रेसेस बाहर रोड पे बिछाए जिन पे 7 से 8 बंदे कूदें, जिसमें 2-3 लेडीज़ हैं, बाकी आदमी हैं, एक बच्चा है।
1: Other brave hearts joined them. Together they saved many lives.
2: सब अनकॉन्शियस थे, मोस्टली एक्सपायर हो गए क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा था। लास्ट राउंड जब हमने लिया था फायर फाइटिंग टीम के साथ, तो मैंने ही वो दरवाजा खोला लास्ट नीचे वॉशरूम का, ग्राउंड फ्लोर का, तो हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ बैठे हुए थे। इवन जैसे फिल्मों में होता है एक दूसरे कंधे पे हाथ रखे, वो कोर्ट पर बैठी हुई थी, आई थिंक शी इज प्रेग्नेंट बट आई एम नॉट कंफर्म, और वो चेयर डाल के उसके बराबर थे। और
1: मेनी पुलिस पर्सनल हु रीच्ड द स्पॉट डिड नॉट वेट फॉर एनी सेफ्टी इक्विपमेंट, walking right into the hotel. They themselves suffered injuries in the act, but managed to help victims. The fire claimed 21 lives, but the number could have been much higher if not for the courage shown by these brave hearts. With Ashutosh Singh and Amit Bharadwaj, Bureau Report, India Today.

0: Thank you for staying with India Today. I'm Suesha Sound Tanwal. It's a complete rebellion by Karnataka Minister Ramalinga Reddy in the DKS Sarkara. This just 2 days after DK Shivkumar took oath as Chief Minister along with 14 other ministers and portfolios were allocated yesterday, Minister Ramalinga Reddy, who tendered his resignation earlier today. India Today accessed the signed letter of the resignation. In that letter, Reddy had said that he could not work against his conscience and that's the reason he resigned. Karnataka Minister Ramalinga Reddy tendered his resignation as Karnataka's Irrigation Minister to Chief Minister DK Shivkumar after he was upset with the portfolio that was allocated to him under the leadership of DKS. Ramalinga Reddy said that he had asserted with Chief Minister that he would not accept any other portfolio except for Bengaluru Development Ministry. Ramalinga Reddy also said that he would continue to work as a party MLA and that he was not miffed with DK Shivkumar or Siddaramaiah. Congress General Secretary Abhishek Dutt met Ramalinga Reddy and tried to convince him to take back his resignation. Meanwhile, supporters of Ramalinga Reddy took to the streets, protested following his resignation. Bengaluru West District Congress workers also tendered resignation.
1: ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಂದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಜನಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅವರೇ ಕರೆದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿ ಈಗ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೇನು ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಏನೋ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ, ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್.
2: ಸರ್, ನೀವು ಪಟ್ಟಿಡಿದ್ರೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ?
1: ಇಲ್ಲಪ್ಪ.
3: Sir, you have resigned today, sir. Just one message, sir. You have sent your resignation to the chief.
1: Yes.
3: Sir, you have resigned today, sir. Just one message, sir. You have sent your resignation to the chief.
1: Yes.
3: Sir, you have resigned today, sir. You have resigned today, sir. Just one message, sir. You have sent your resignation to the chief.
1: Yes.
4: Because he is not from the rural area.
5: Yes, sir.
4: It means that something works to the quality of the welfare of urban sector. I speak to him, he's a great friend and an important leader. I'll sort it out.
5: Sir, so they're also saying that his supporters and Congress workers also are going to be resigning, sir. There is a word.
4: Discipline is more important than anything.
6: He's very important for the party. He's very important for the state. ಒಂಬತ್ತು ಸಾರಿ ಗೆದ್ದವರು, ಅವರ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಅಲ್ವಾ? ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ, ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಒಂಬತ್ತು ಸಾರಿ ಗೆದ್ದವರು, ಅವರ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಅಲ್ವಾ?
7: ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ.
8: ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವ್ರು
7: ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ.
8: ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೊಂಥರ ಮುಜುಗರ ಅಲ್ಲ?
7: ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ.
0: And there you heard the many, many responses that have come in. Day two of the DKS Sarkar and trouble that has already begun, where Ramalinga Reddy tendered his resignation. Now remember, this had been happening since a couple of days, especially yesterday, where Ramalinga Reddy made it very, very clear that he will only accept one ministry, and that is the Bengaluru Development Ministry. If he is given any other portfolio outside of that, he would not accept it. Despite that, the government that awarded him the portfolio of irrigation, and that is something he was not okay. Remember, it's just been 2 days. DK Shivkumar took oath with 14 other ministers, Portfolios were allocated yesterday, but Ramalinga Reddy, who tendered his resignation earlier this morning, he was very clear, and in that resignation letter where he stated that his conscience did not allow him to continue with a portfolio where he wasn't convinced, as he will not be able to do justice to it. But that, of course, has raised a lot of eyebrows, because DK Sarkara that has started and just 2 days of it in power, that the rift that already has made headlines. And we are now cutting across to this news conference by the TMC. Let's listen in.
9: প্রত্যেকে দেখেছেন একটা অরাজক বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করার প্রচেষ্টা। আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি, প্রশাসন নিশ্চিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এটা আমরা বিশ্বাস রাখি। স্বাভাবিকভাবে গতকালের ঘটনার যা ফুটেজ আমরা পেয়েছি, যেভাবে সকাল থেকে এবং এখানে এই যে বিধানসভা কেন্দ্র যেখানে আমরা বসে রয়েছি, এটা এন্টালি বিধানসভা কেন্দ্র নয়, এটা চৌরঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। অন্য জায়গা থেকে, বহু দূর থেকে এইরকম কিছু লোক এনে এই বিশৃঙ্খলা, আমরা মনে করি এই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টির চেষ্টা গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকারক। গণতন্ত্রে বিরোধীদের কণ্ঠস্বর, বিরোধীরা তাদের কথা বলবেন, তাদের রাজনীতির কথা, বিরোধীরা জোরালোভাবে আমরা আমাদের কথা বলবো, কিন্তু সেখানে যেভাবে কালকে এখানে সকালবেলার এই অরাজক পরিস্থিতির তৈরির চেষ্টা হয়েছে, যিনি বা যারা করেছেন তাদের দায় নিতে হবে। এবং আমরা বিশ্বাস করি প্রশাসন নিশ্চিতভাবে, একজন নির্বাচিত বিধায়ক, একজন প্রাক্তন বিধায়ক, তাদের বাড়ির সামনে যে ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা হয়েছে, প্রশাসন নিশ্চিতভাবে ব্যবস্থা নেবে। আমরা গতকালও প্রশাসনের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, আজকে গতকাল সন্দীপন কমপ্লেন করেছে, আমরা ওয়েট করতে চাই। যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে আমরা তারপর আলোচনা করে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করব।
10: আপনারা তো কালকে দেখা করেছেন পুলিশের সঙ্গে, কোনো আশ্বাস পেয়েছেন লালবাজারে গিয়েছিলেন?
9: কালকে কমপ্লেন দেখা করা হয়েছে, প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে। এবার স্বাভাবিকভাবে প্রশাসনকেও তো কিছুটা সময় দিতে হবে, তারপরে যা হবে আমরা আলোচনা করে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা ঠিক করব। আপনি তো বললেন,
11: আমরা আজকে আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের বিজেপির যিনি সভাপতি সমীক ভট্টাচার্য মহাশয় খুব ভালো ভালো কথা বলছেন সংবাদ মাধ্যমে, আপনাদের মাধ্যমে বাংলার মানুষের কাছে ভালো ভালো কথা বার্তা দিচ্ছেন। আমি আপনাদের মাধ্যমে রাজ্য বিজেপি সভাপতিকে জানতে চাই,
12: আমাদের বিজেপির সহনেতা
11: বিধায়ক সন্দীপন সাহার বাড়িতে যেভাবে অন্য এলাকা থেকে এসে
12: সন্দীপন সাহার হাউস যে মন্ডল অ্যাটাক ইয়েস্টারডে,
11: যিনি এন্টালি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির মনোনীত প্রার্থী ছিলেন, তিনি যে ধরনের নক্করজনক ঘটনা এবং কাণ্ড ঘটিয়েছেন
12: এন্টালি,
11: এর জন্য দলগতভাবে কোনো ব্যবস্থা নেবেন কিনা
12: সন্দীপন সাহার
11: ওনারা বিভিন্ন সময়ে বলে থাকেন
12: বিজেপি উইল টেক এনি অ্যাকশন এগেইনস্ট হার অর নট,
11: বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন কোন ঘটনা ঘটছে বলছে এটা জনরোষ, এদের সঙ্গে বিজেপির কোন সম্পর্ক নেই, তাহলে
12: এক্ষেত্রে
11: যে আমরা শৃঙ্খলা প্রধান দল, আজকে আমরা রাজ্য সভাপতি জানতে চাই প্রিয়াঙ্কা টিবলিওয়ালের বিরুদ্ধে যে এই ধরনের নক্করজনক আমাদের প্রশ্ন থাকবে, উনি যখন বলেন যে আইন আইনের পথে চলবে এবং বিভিন্ন আমরা প্রশাসনের নলেজে এনেছি, আমরা লিখিত এফআইআর দায়ের করেছি,
12: তার
11: সম্মানকে মানহানি করা হয়েছে আমরা যে এফআইআর করেছি, এই এফআইআর এর মানে সমর্থনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কি ব্যবস্থা নিতে চায় আমরা এটা জানতে চাই। তাদের মাঝে দড়ি পড়বে, তাদের গ্রেফতার করবে, তাদের
12: মিনিস্টার
11: সব জায়গায় বলছে আইনের শাসন হবে। এখানে আইনের শাসন কিভাবে উনি প্রতিষ্ঠিত করেন, প্রিয়াঙ্কা টিবরিয়াল সহ তার যে দলবল, আপনাদের বিভিন্ন সংবাদ চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা বাংলার মানুষ দেখেছে, দেশের মানুষ দেখেছে, যিনি বিজেপির প্রতিদ্বন্দ্বী।
0: And that's the word coming in from Rita Bratha Banerjee, the rebel TMC leader, who has now said that there is no point in the rebels turning back. And that is something that will not happen, as he once again asserts the implosion within the TMC and how they will not change their mind. And more breaking news coming in from Karnataka, where another mantri is upset with the portfolio that has been given to him. This time it is K.H. Muniyappa after Ramalinga Reddy. K.H. Muniyappa has said that he is also not happy with the current portfolio. Portfolio is not right for RLR, given his seniority has not been maintained. He had won 8 times and the balance has not been kept, is what he has claimed. He's also requested Mallikarjun Kharge to change his portfolio and give him a portfolio where he can serve the people of Karnataka, is his reason of unhappiness and dissent. Let me take this to my colleague Nagarjun, joining us on the broadcast. Nagarjun, certainly not well within the DKS Sarkar, just 2 days, and we see the sort of discontentment coming in from the mantris within the cabinet. This time it is Muniyappa.
13: Well, that is true. Muniyappa has been allotted the food and food supply portfolio. He's not happy with it. He's saying that he needs social welfare department, and he's given out a media statement that seniority is not maintained. He requests Mallikarjun Kharge to ensure that seniority is maintained so that the party can win elections in 2028. Remember, Muniyappa comes from the SC left community. He's just spoken to the media right now in Devanahalli, in his home constituency, saying that he's unhappy with the way things have gone in portfolio allocation. Ramalinga Reddy should have been given something better. He's an 8-time MLA. Muniyappa feels that he is also quite senior and is not happy with food and civil supply portfolio. He wants social welfare portfolio, and today when Kharge comes, most likely Muniyappa may speak to Kharge and Rahul Gandhi and urge that to change his portfolio, and we'll have to see what further action will Muniyappa take if the portfolio is not changed.
0: All right. Many thanks for getting us those details. We'll wait and watch how this turns out within the DKS Sarkar. But crucial there, as just second day and two ministers who've already expressed their unhappiness. Ramalinga Reddy, who's also put down his papers, and Muniyappa has said, please change my portfolio. And that's all that we can pack for you in this edition of the news. Do stay tuned to India Today for the very latest. We'll be back on the other side.
14: Are watching India Today.
15: What's up, everybody? It's Bretsky, and America is turning 250. And I can't think of a better way to celebrate that than playing on an American-owned social casino, SpinQuest.com. With all of your favorite games, live craps, bubble craps, live blackjack, there's no better place to play for free and win real cash prizes. SpinQuest.com.
16: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
17: Big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains June 5th through the 11th with prices starting at $38.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
18: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific, for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
19: कमरों की B&B चलाने की अनुमति दी गई। तो ऐसे ही अब हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त NOCs नहीं है उसको सील किया जाएगा, उनकी अनुमति जो वॉयलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा।
20: जब स्वीकृत 5 कमरे की जगह 25 कमरे का GST वसूल रहे थे तो कोई तहखाने में तो नहीं चल रहा था, कई मंजिला भवन में चल रहा था, तो सिस्टम देख नहीं रहा था, पुलिस देख नहीं रही थी, वसूली करने वाले देख नहीं रहे थे, फायर वाले देख नहीं रहे थे। तो मैं तो मानता हूं ये दुर्घटना नहीं हत्या है। विज्ञापन के साथ मैक्स हॉस्पिटल के सामने चलाया जा रहा था, क्या तब नहीं देखा गया था कि एक ही एंट्री एक ही एग्जिट? इसीलिए मैं कहता हूं ये दुर्घटना नहीं हत्या है और इसके जिम्मेदार ये ट्रिपल इंजन की सरकार भी हुई।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: द एक्शन नेवर स्टॉप्स एंड नीदर डू वी। फ्रॉम ब्रेकिंग अपडेट्स टू मैच एनालिसिस, फ्रॉम बिग मोमेंट्स टू बिगर कॉन्वर्सेशन, दिस इज वेयर स्पोर्ट्स कम्स अलाइव। Fast, sharp, unfiltered, for the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.

0: इस दुखद घटना पर पूरा प्रशासन चिंतित है, व्यथित है और हम सब इसको मिलकर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके संदर्भ में जो एनफोर्समेंट के एक्शन है, जिन बिल्डिंग्स के पास जरूरी कागजात, जरूरी अनुमतियां नहीं है, और जैसे ये बिल्डिंग भी इसकी अनुमति 2024 में दी गई, जो आज ये दुखद घटना हुई है, 2024 में 6 कमरों की B&B चलाने की अनुमति दी गई। तो ऐसे ही अब हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त NOCs नहीं है उसको सील किया जाएगा, उनकी अनुमति जो वॉयलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा।
1: जब स्वीकृत 5 कमरे की जगह 25 कमरे का GST वसूल रहे थे तो कोई तहखाने में तो नहीं चल रहा था, कई मंजिला भवन में चल रहा था, तो सिस्टम देख नहीं रहा था, पुलिस देख नहीं रही थी, वसूली करने वाले देख नहीं रहे थे, फायर वाले देख नहीं रहे थे। तो मैं तो मानता हूं ये दुर्घटना नहीं हत्या है। विज्ञापन के साथ मैक्स हॉस्पिटल के सामने चलाया जा रहा था, क्या तब नहीं देखा गया था कि एक ही एंट्री एक ही एग्जिट? इसीलिए मैं कहता हूं ये दुर्घटना नहीं हत्या है और इसके जिम्मेदार ये ट्रिपल इंजन की सरकार भी हुई।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Are you ready to move? With CME Federal Credit Union, you can start your home buying journey. Open an Ohio Homebuyer Plus account and earn 6.5% APY for up to 5 years. Ready to buy? Lock in a 5-1 ARM mortgage at just 5% APR. Whether your first home or next chapter, CME is here for the journey every step of the way. Learn more at cmefcu.org.
1: APY means annual percentage yield. APR means annual percentage rate. Terms apply. Membership eligibility and approval required. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Visit cmefcu.org for additional details.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: स्वीकृत 5 कमरे की जगह 25 कमरे का जीएसटी वसूल रहे थे तो कोई तहखाने में तो नहीं चल रहा था, कई मंजिला भवन में चल रहा था, तो सिस्टम देख नहीं रहा था, पुलिस देख नहीं रही थी, वसूली करने वाले देख नहीं रहे थे, फायर वाले देख नहीं रहे थे। तो मैं तो मानता हूं ये दुर्घटना नहीं हत्या है। विज्ञापन के साथ मैक्स हॉस्पिटल के सामने चलाया जा रहा था, क्या तब नहीं देखा गया था कि एक ही एंट्री एक ही एग्जिट? इसीलिए मैं कहता हूं ये दुर्घटना नहीं हत्या है और इसके जिम्मेदार ये ट्रिपल इंजन की सरकार भी हुई।
5: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: इस दुखद घटना पर पूरा प्रशासन चिंतित है, व्यथित है और हम सब इसको मिलकर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके संदर्भ में जो एनफोर्समेंट के एक्शन है, जिन बिल्डिंग्स के पास जरूरी कागजात, जरूरी अनुमतियां नहीं है, और जैसे ये बिल्डिंग भी इसकी अनुमति 2024 में दी गई, जो आज ये दुखद घटना हुई है, 2024 में 6 कमरों की B&B चलाने की अनुमति दी गई। तो ऐसे ही अब हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त NOCs नहीं है उसको सील किया जाएगा, उनकी अनुमति, जो वॉयलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा।
1: जब स्वीकृत 5 कमरे की जगह 25 कमरे का GST वसूल रहे थे तो कोई तहखाने में तो नहीं चल रहा था, कई मंजिला भवन में चल रहा था, तो सिस्टम देख नहीं रहा था, पुलिस देख नहीं रही थी, वसूली करने वाले देख नहीं रहे थे, फायर वाले देख नहीं रहे थे। तो मैं तो मानता हूं ये दुर्घटना नहीं हत्या है। विज्ञापन के साथ मैक्स हॉस्पिटल के सामने चलाया जा रहा था।
2: इंडिया टुडे एट द ग्लोबल हाई टेबल। The Big Economic Forum. India Today sets the agenda. World leaders choose India Today. India Today at the global stage.

0: The horror of Malviya Nagar was a wake-up call for the capital. As the Delhi government begins its crackdown on illegal structures and Chief Minister Rekha Gupta holds review meetings, India Today's reality check reveals that Delhi is sitting on a tinderbox. In the heart of the capital's tourist hub, safety norms are being violated in plain sight.
1: आग लग गई तो कैसे भागेंगे लोग?
2: मुश्किल ही भागेंगे।
1: कंजेस्टेड है बहुत।
2: मैंने हैदराबाद से आया हूँ, क्योंकि मैंने देखा है काफी कल हम लोग जब यहाँ से अंदर से गुजर रहे थे तो ऑटो में अभी आने के लिए भी क्या बहुत दिक्कत हो रहा था। तो एक आदमी अगर बंदा रुक जाए तो दूसरा बंदा अंदर जाने के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। लेकिन क्या एरिया ऐसा है कि बहुत कंजेस्टेड बहुत एरिया है यहाँ पे।
1: बहुत है। बहुत गाड़ी आई नहीं, आप गाड़ी लेके गाड़ी आई आपके अंदर?
2: नहीं नहीं, मैं वहाँ से स्टेशन से पैदल आ चुका हूँ।
3: पोल ऊपर देखो ना, आगे क्या कर रहा था बिजली का? ये देखो,
1: ये देखिए ऊपर बिजली के पोल को
3: 1-1 करोड़ रुपए लेती है एमसीडी इनसे,
1: इनसे 1-1 करोड़।
3: हाँ, ये कब्जे कर रखे हैं। ये तो इसके बराबर पैर लगा, देखो
1: आप ये देखिए,
3: पानी का बिल नहीं दिया इनने, ताला लगा रखा पानी का बिल।
4: गलियों में देखो कहीं साइकिल नहीं जा सकती।
1: कहाँ पर है
4: गली? सब अंदर देखो, ये सब घर थे, सब ये सब बिल्डिंग है, घर थी ये।
0: होटल आफ्टर होटल पैक्ड इनटू क्रैम्प्ड लेन्स, ऑपरेटिंग विदाउट बेसिक फायर प्रिपेयर्डनेस। अबव देम हैंग्स अ डेडली वेब ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। अ सिंगल स्पार्क, अ शॉर्ट सर्किट एंड दीज नैरो लेन्स कुड टर्न इनटू डेथ ट्रैप्स विद इन मिनट्स। The roads are so congested that even a car struggles to pass through. For firefighters, every second matters in an emergency.
5: This is the area where we have multiple lodges, restaurants in this area, and if fire breaks out here, it will be cumbersome for fire brigade to even reach here on time. If any kind of short circuit happens, then people will die in large number here. Why? Because no rule is being followed here.
0: What's even more alarming is that most hotels have just one entry and one exit point. If flames block that lone escape route, guests could find themselves trapped with nowhere to run.
5: सर है आपके पास एनओसी है?
6: एनओसी सर हमारे पास सिलेंडर के फैसिलिटीज है, सारा चीज
5: सिलेंडर के फैसिलिटीज है,
6: जो भी है नई नई लगाने जा रहे हैं, दो चार लाख।
5: नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है फायर वाला?
6: नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो अभी सब कुछ अप्लाई किया हुआ है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा।
5: कितना पुराना होटल है
6: ये? तो सर समथिंग अराउंड मुझे पता नहीं कितना है।
5: आग लगी तो लोग कैसे भागेंगे?
7: ऐसे भागेंगे, दरवाजा खुला है अपना,
5: रास्ता तो है ही नहीं
7: अपना, है ना रास्ता
5: आपका है रास्ता?
7: हाँ, अपना रास्ता है, ऐसा स्थिति आने ही नहीं देंगे।
5: ये देखिए इनको यहाँ पर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि इस जगह पर जो इतनी पतली गली है, संकरी गली है, जहां पर तारों का जंजाल है, पतली पतली गलियां हैं, यहां पर फायर ब्रिगेड तक नहीं पहुंचती, लेकिन इनको फायर सेफ्टी मिला हुआ, यहां पे एनओसी सर्टिफिकेट मिला हुआ है और साइन किया हुआ है अतुल गर्ग ने।
8: सारा चीज तो है सर अवेलेबल,
5: सारा चीज अवेलेबल है, लेकिन यहां पे आपको एनओसी मिला हुआ है फायर का?
8: पता नहीं सर, मुझे तो नहीं मालूम।
0: द मालविया नगर ब्लेज वाज अ वार्निंग. A warning that Delhi cannot afford to ignore. Because unless authorities crack down on violations and enforce fire safety norms, the next tragedy may not be a question of if, but when. With Piyush Mishra in Delhi, Bureau Report, India Today.
9: The spotlight may be on the national capital after the deadly hotel fire, but the problem is far bigger than Delhi. Across the country, questions are being raised about whether hotels are truly prepared to handle any emergency and whether safety norms exist only on paper. India Today's reality check now takes us to Lucknow, where our investigation uncovered serious lapses, missing firefighting equipment, exposed gas cylinders and even alarming gaps in emergency preparedness. The findings raise a troubling question. How many more such buildings are operating unchecked across the country? This is my colleague Ashish Srivastav.
10: The deadly Delhi hotel fire has once again exposed a chilling question. Are the hotels we trust with our lives actually safe? India Today's reality check in Lucknow reveals a shocking picture. At Hotel Gemini Continental in Lucknow, the firefighting system appears to exist only on paper.
2: यहाँ पर अगर हम आपको फायर सिस्टम दिखाएंगे तो आप पाएंगे कि इसमें पाइप अवेलेबल नहीं है इस समय, जबकि इसमें पूरा पाइप होना चाहिए। हालांकि वो बॉक्स तोड़ने के लिए यहाँ पर ये बना हुआ है, ये सिस्टमेटिक तरीके से शीशा है इसमें, इसको खोलने के लिए पाइप निकालने के लिए हैमर अलग से होना चाहिए, वो मौजूद नहीं है। जो इक्विपमेंट्स हैं वो कितने वर्क कर रहे हैं।
10: एंड द डेंजर्स डोंट स्टॉप देयर। जस्ट बिलो द किचन मल्टीपल गैस सिलेंडर्स आर स्टोर्ड ओपनली।
2: तो सिलेंडर जो हैं वो खुले हुए रखे गए हैं, अगर कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें यहाँ पर घटना हो सकती है। अगर हम आपको इसके बैकग्राउंड से ऊपर लेकर जाएंगे, जो किचन है, किचन में भी आप देख सकते हैं कि जो सिस्टमेटिक तरीके से बनना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। फायर के लिए ज़रूर एक चीज़ ऑन कराई गई है, लेकिन वो फायर पर कितना कामगर होगा।
10: Even inside the kitchen, only a single sprinkler appears functional, hardly reassuring in a high-risk zone. Then comes perhaps the most alarming discovery, the basement. A space that should be equipped for emergency evacuation. Instead, there are no fire alarms and no visible safety mechanisms.
2: यहाँ पर फायर अलार्म्स की उपलब्धता नहीं है। ये पूरी तरीके से अनसेफ बनाया गया है। यहाँ इसको गोडाउन तरीके से बना दिया गया है। जो स्विचेस हैं वो सारे ओपन लगे हुए हैं। ये एक जो परमानेंट होटल है उसके बैकग्राउंड या कह सकते हैं अंडरग्राउंड बने हुए कंस्ट्रक्शन का एरिया है, और यहाँ पर आप पाएंगे कि फायर अलार्म जैसी कोई सुविधा नहीं है। सीसीटीवी जरूर है, और दूसरा जो भी एक्सटिंग्विशर होते हैं वो भी नहीं है फायर के। इस होटल में जो कमियां पाई गई हैं उसको लेकर सीएफओ ने एक लिस्ट बना ली है और उसको जारी किया जाएगा, चाहे वो प्रेशर को लेकर हो, सेंसर को लेकर हो, हर चीज को लेकर नोटिफिकेशन किया गया है। यहाँ का होटल मैनेजमेंट बोलने को तैयार नहीं है, चूंकि कोई मौजूद भी नहीं है।
10: इंडिया टुडेज इन्वेस्टिगेशन फाउंड दैट सेफ्टी वायलेशंस आर नॉट लिमिटेड टू वन प्रॉपर्टी। दीज आर नॉट माइनर लैप्स।

0: control. A video of the Ivy County blaze has sparked a bigger debate. Look at that for yourself. The fire was on the 12th floor. The fire brigade is on the ground floor, really hoping that they have the power to sprinkle water from ground floor to the 12th. Now, to reach beyond that time, they could reach just till about 6th floor, 6th or the 7th floor, that's all. That image is now raising a critical question. We keep saying about we'll do fire audits, we talk about how fire preparedness on fire drills. Are we really ready? Is anybody really following? Are the residential colonies following? Where our kids are, where our parents are during the day? As Indian cities build taller and taller towers, is firefighting infrastructure really keeping pace? Do our emergency services have any equipment needed to tackle blazes in high-rise buildings? And if a major fire breaks out on the upper floors of the residential tower, can anyone reach in time? When was the last time a fire drill was done in a building like that? And did the locals cooperate? All those questions, worrying questions, now come to mind. And let me take those to my colleague Himanshu Mishra, who's joining us now. Himanshu, abhi tak ye kahani thi ki kuch buildings hain. Delhi to bahut cluttered jagah hai. Wahan par bahut narrow lanes hain jahan par log pahunch nahi paate hain, fire tenders pahunch nahi paate hain. Agar aap Noida ki baat kare to yahan jagah bahut hai, lekin kya infrastructure hai jagah par? अगर 17 फ्लोर की फायर या 12 फ्लोर की फायर आप ग्राउंड फ्लोर से बुझाने की कोशिश करेंगे तो कैसे काम चलेगा?
1: बिल्कुल, देखिए, और ये पहली बार नहीं बल्कि ये दिल्ली से सटे अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में यही तस्वीर देखने को मिली थी जब 12वें फ्लोर पे आग लगी थी और जब हाइड्रोलिक से पानी, वहां तो हाइड्रोलिक मशीन भी पहुंच गई थी, उसके बावजूद जो है वो पानी की बौछार वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। और वही कुछ आज देखने को मिला। शुरुआत में जो गाड़ी पहुंची, उन गाड़ी को जबकि कॉल जब हुई थी तो कॉल में क्लियर था कि 12वें फ्लोर पर आग लगी है, तो जो गाड़ियां पहुंची उन गाड़ियों का जो पानी का प्रेशर है वो उतनी ऊंचाई तक पहुंची नहीं रहा था। उसके बाद हाइड्रोलिक गाड़ियां पहुंची और तब जाकर के आग पर काबू पाया जा सका, क्योंकि शुरुआत की जो गाड़ियां थी उनके अंदर पानी का प्रेशर इतना नहीं होता कि इतनी ऊंचाई तक जाए। अब आप सोचिए इसके में सबसे ज्यादा पैनिक में कौन होगा? पैनिक में वो होगा तो ना जिसका घर ठीक ऊपर है, जिसका घर अगल में बगल में है, वो लोग, क्योंकि घर नहीं जलता है, पूरी गृहस्थी जल जाती है। मैंने देखा कि किस तरीके से जिन लोगों का घर जलता है, कुछ लोग हवाई चप्पल में, सिर्फ स्लीपर में घर से निकले थे और सिवाय स्लीपर के उनके पास कुछ नहीं बचा था, सब कुछ जल गया था, पूरी जिंदगी की कमाई, सारे मोबाइल, लैपटॉप, कपड़े, सब कुछ, उनके पास इतना भी कुछ नहीं था कि वो घर से निकल कर कहीं के जा सके। गाड़ी है, गाड़ी की चाबी जल गई, वो घर में है, कुछ नहीं बचता। इसलिए ये घर का फायर कहने के लिए, घर की आग होती है, पूरी गृहस्थी होती है किसी की। और आप सोचिए वो लोग किस पैनिक में आते हैं कि ऊपर से लोगों ने पानी खुद ही डालना शुरू कर दिया। जो बिल्डिंग की फायर फाइटिंग सिस्टम होते हैं वो काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन जब बड़ी आग होती है तो सिर्फ वो सपोर्टिंग वर्क में रह जाते हैं। वो इस स्टैंडर्ड के नहीं है कि आप उसे पूरी पूरी बड़ी आग, पूरी बिल्डिंग की आग बुझा लेंगे। हाँ, वो मदद जरूर करते हैं अगर वो सिस्टम पूरी तरीके से काम करता है, मदद जरूर करता है। लेकिन अगर आपको ये सोचता है कि पूरी आग बुझा दे तो ये संभव नहीं होता है। और जिस तरीके आग आजकल देख मिल रही है, जैसे इंदिरापुर देखा किस तरीके से एक फ्लैट की जो आग थी वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 8 फ्लैट को अपने चपेट में ले लिया, यानी 8 परिवार पूरी तरीके से जो है वो रोड पर आ गए, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था।
0: माय कॉलीग हिमांशु देयर पॉइंटिंग आउट सम वेरी पर्टिनेंट इश्यूज। What are you left with after fire? For us, it's one building, one household, one flat. And imagine how expensive these flats are. You put your entire, you know, life's earning into getting an address like that, and then this happens and nobody comes to your rescue. Sham, really, what our Indian cities are really becoming, getting taller by the day, getting also unsafe by the day. That was the visual from Noida and Delhi. We saw in Mumbai, we saw in Lucknow. None of them are any different. On that note, let's take a break. We'll come back. News and updates continue right here on India Today.

0: The horror of Malviya Nagar was a wake-up call for the capital. As the Delhi government begins its crackdown on illegal structures and Chief Minister Rekha Gupta holds review meetings, India Today's reality check reveals that Delhi is sitting on a tinderbox. In the heart of the capital's tourist hub, safety norms are being violated in plain sight.
1: आग लग गया तो कैसे भागेंगे लोग?
2: मुश्किल ही भागेंगे।
1: कंजेस्टेड है बहुत।
2: मैंने हैदराबाद से आया हूँ, क्योंकि मैंने देखा काफी कल हम लोग जब यहाँ से अंदर से गुजर रहे थे तो ऑटो में अभी आने के लिए भी क्या बहुत दिक्कत हो रहा था। तो एक आदमी अगर बंदा रुक जाए तो दूसरा बंदा अंदर जाने के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। लेकिन क्या है, एरिया ऐसा है कि बहुत कंजेस्टेड बहुत एरिया है यहाँ पे।
1: बहुत है। बहुत गाड़ी आई नहीं, आप गाड़ी लेके गाड़ी आई आपके अंदर?
2: नहीं नहीं, मैं वहाँ से स्टेशन से पैदल आ चुका हूँ।
3: पोल है ऊपर, देखो ना क्या कर रहा बिजली। ये देखो,
1: ये देखिए ऊपर बिजली के पोल को
3: एक एक करोड़ रुपए लेती है एमसीडी इनसे,
1: इनसे एक एक करोड़।
3: हाँ, ये कब्जे कर रखे हैं। ये तो इसके ऊपर आप पैर लगा, देखो
1: आप ये देखिए,
3: पानी का बिल नहीं दिया इनने, ताला लगा रखा पानी का बिल।
4: गलियों में देखो कहीं साइकिल नहीं जा सकती।
1: कहाँ पर है
4: गली? ये सब अंदर देखो, ये सब घर थे, सब ये सब बिल्डिंग है, घर थी ये।
0: होटल आफ्टर होटल पैक्ड इनटू क्रैम्प्ड लेन्स, ऑपरेटिंग विदाउट बेसिक फायर प्रिपेयर्डनेस। Above them hangs a deadly web of electric wires. A single spark, a short circuit, and these narrow lanes could turn into death traps within minutes. The roads are so congested that even a car struggles to pass through. For firefighters, every second matters in an emergency.
5: This is the area where we have multiple lodges, restaurants in this area, and if fire breaks out here, it will be cumbersome for fire brigade to even reach here on time. If any kind of short circuit happens, then people will die in large number here. Why? Because no rule is being followed here.
0: What's even more alarming is that most hotels have just one entry and one exit point. If flames block that lone escape route, guests could find themselves trapped with nowhere to run.
5: Sir, है आपके पास NOC है?
6: NOC सर हमारे पास सिलेंडर के फैसिलिटीज है, सारा चीज
5: सिलेंडर के फैसिलिटीज है,
6: जो भी है नए नए लगाने जा रहे हैं, दो चार लगे।
5: नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है फायर वाला?
6: नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो अभी सब कुछ अप्लाई किया हुआ है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा।
5: कितना पुराना होटल है
6: ये? तो सर समथिंग अराउंड मुझे पता नहीं कितना है।
5: आग लगी तो लोग कैसे भागेंगे?
7: ऐसे भागेंगे, दरवाजा खुला है अपना,
5: रास्ता तो है ही नहीं
7: अपना। है ना रास्ता?
5: आपका है रास्ता?
7: अपना रास्ता है, ऐसा स्थिति आने ही नहीं देंगे अपना।
5: ये देखिए, इनको यहाँ पर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि इस जगह पर जो इतनी पतली गली है, संकरी गली है, जहां पर तारों का जंजाल है, पतली पतली गलियां हैं, यहां पर फायर ब्रिगेड तक नहीं पहुंचती, लेकिन इनको फायर सेफ्टी मिला हुआ, यहां पे एनओसी सर्टिफिकेट मिला हुआ है और साइन किया हुआ है अतुल गर्ग ने।
8: सारा चीज तो है सर अवेलेबल,
5: सारा चीज अवेलेबल है, लेकिन